0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको
2: हाँ?

0: लोरी
1: लोरी लोरी
0: हे मई लोरी, अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां, ये मर्द भी कर सकते हैं।
1: मर्द जिंदाबाद।

जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू। थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11, 11.
2: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: मैं हूँ निशा नासिर, लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.
2: Breakfast with Deep Raja.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: Discover Rio de Janeiro, Sao Paulo in Brazil, Machu Picchu and Cusco in Peru with travelhubworld.com.
9: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 or 0208-782-8833.
8: Travel Hub, best service with unbeatable price.
9: At all protected.
8: Visit travelhubworld.com.
10: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Center on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Center, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
11: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
12: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग.
10: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा.
12: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स.
10: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM.
12: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
13: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
14: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
13: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
14: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
13: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
14: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG.
13: टिकट बुक करो segalondon.co.uk.
14: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा.
15: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
16: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL.
15: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
16: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फात्सुमा.
15: कॉल प्रथम पटेल 07838302450.
17: Sunshine, skyscrapers and souks
18: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
17: Flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
18: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
17: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
18: Southall Travel. At all protected. चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, CTC की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज. चा फॉर यू, 5 चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
19: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at Radio Central.

0: नवरात्रि 2026
1: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
0: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
1: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
1: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ। 9 से 18 अक्टूबर द विलोज, फॉरेस्ट रोड, इल्फर्ड, IG6 3SL।
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: आशा जी की आवाज में था ये खूबसूरत गाना, जिसमें रवि का म्यूजिक था, बीआर चोपड़ा की फिल्म और सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, राजकुमार, बलराज सहनी और न जाने कितने बड़े बड़े कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था। और उससे पहले आपने सुनी जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम गीत गाता चल। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आप सबका साथ देने के लिए। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं और सबका यही सवाल है कि आप कहाँ चली गई थी। आई होप आपकी हॉलीडेज अच्छी रही होंगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा। तो यस, मैंने बहुत ही अच्छा समय बिताया है। और कहते हैं ना, अंतर मन तक आप शुद्ध हो जाते हैं, आप धुल जाते हैं, मन खुश हो जाता है, कुछ ऐसा ही मैं फील कर रही हूँ यहाँ वापस आकर। और इतनी जल्दबाजी में गई कि आप सबको क्या किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं ना, जब भगवान आपको बुलाता है तो समय कहाँ मिलता है। और मेरी ये कई सालों की ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ गई हूँ वहाँ जाऊँ। मैं जब भी किसी टेंपल में जाती थी, मैं यही कहती थी कि भगवान मुझे केदारनाथ आना है, मुझे बद्रीनाथ आना है, मुझे कब आप बुलाएंगे, मुझे कब मौका मिलेगा। मैं हर बार प्लान बनाती थी लेकिन वहाँ जाना नहीं हो पाता था। और जब भगवान ने बुलाया तो इतना सडनली प्लान बना कि एक दिन पहले हमने टिकट बुक कराया और बस हम वहाँ के लिए रवाना हो गए। और हमारा 6 दिन का ट्रिप था और उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जा पाएँ। लेकिन कहते हैं ना, भोलेनाथ ने ऐसा हाथ पकड़ा कि जो जो सोचा था वो सब कुछ बिल्कुल समय पर हुआ। कई बार मन में ये भी ख्याल आया कि अरे ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हो तो आपने जो सोचा है वो काम कैसे रुक सकता है। बस कुछ ऐसी ही मेरी यात्रा रही, ज़रूर बताऊंगी आपको उसके बारे में, क्योंकि वहाँ जाना सौभाग्य का ही काम है और मैं अपने आप को सच में बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊंगी, आप सब जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये बता दें,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.5 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: Natto food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October, at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6, 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
3: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
2: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: विटनेस द ब्यूटी ऑफ जॉर्डन, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
6: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
2: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
7: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी.
2: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी.
7: बीकानेर वाला.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
10: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
9: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
11: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
12: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
13: Karatino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Karatino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Karatino Better Ghee.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
15: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नदीम श्रवण के म्यूजिक पर अनुराधा पौडवाल की आवाज में साजन फिल्म का ये गाना मेरी ओर से आप सबके लिए जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भिजवाए हैं और आप सबका यही कहना है कि हमने आपको बहुत मिस किया। तो ये आपका प्यार है और इसीलिए ये प्यार भरा गाना सभी के लिए मेरी ओर से।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आगे बढ़ने से पहले थैंक्स कहना चाहती हूँ अश्विनी को और शीना को जिन्होंने मेरी जगह आपका साथ दिया मेरे शो में। सो आगे बढ़ जाते हैं, आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मालती जी, जैस जी, हरीश खत्री जी, फारूक मोहम्मद, संध्या भावसर, जासू जी, सनी नरेंद्र, तोची जी, विजय जी, विनोद जी, अनिल सोनी वियाना से, हमारे गिरीश जी, दिनेश पोपर जी, मिसेस शेख, रोशनी जी, मृदु जी, शेखर जी, उल्लास जी टोरंटो से, किरण जी, प्रज्ञा, अर्जुन, मिसेस पेकेचियांग, निर्मला जी, हिमांशु पटेल, ज्योति जी, विजय गुडोरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका यही कहना है कि आप बिना बताए चले गए, ये आपने अच्छा नहीं किया। और ये कहना है ख़ास तौर पर सनी जी का। तो मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि मैं बता कर जाऊंगी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी को बताने का समय ही नहीं मिला और मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। सो मैं बहुत खुश हूँ। आई नो मैंने आपको थोड़ा सा नाराज तो किया, लेकिन अब वापस आ गई हूँ। अभी हाल फिलहाल कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है, अभी मैं आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन आपको ज़रूर बताऊँगी कि हमारा जो 6 दिन का ट्रिप था उसमें हमने जो जो सोचा वो हुआ। सबसे पहले हम अपने घर से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से हमने हरिद्वार के लिए टैक्सी ली और जब हम हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ पर हम पहुँचे हर की पौड़ी पर, जहाँ पर गंगा आरती हो रही थी। और गंगा आरती मैंने यहाँ थेम्स पर जो गंगा आरती हुई थी वो नहीं देख पाई थी। मैंने सोचा यार ये मिस हो गई, लेकिन मन में था कि किसी दिन जाकर भारत की गंगा आरती देखूँगी। लेकिन ये ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। और ये गंगा आरती देखने का प्लान हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन हम समय से पहले पहुंच गए और हमारा ड्राइवर बोला कि मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ। हमने गंगा आरती देखी और मैं देखकर रह गई कि कितनी भीड़ थी, जबकि वहाँ पर कोई ऐसा खास महीना भी नहीं चल रहा था जिसमें गंगा स्नान करने का कोई ऐतिहासिक महत्व होता हो। लेकिन बावजूद उसके घाट पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति लोगों में कि उस दिन एक जस्ट नॉर्मल डे था। इतनी भीड़ हमने सोची नहीं थी हमें मिली। और फिर दिल तो हुआ कि गंगा नदी में डुबकी लगा ली जाए, लेकिन रात का वक्त था और हमारे पास सामान भी नहीं था कि हम डुबकी लगा लें। तो मन में ये ख्वाहिश रह गई कि हाय गंगा में स्नान नहीं हो पाया, अब पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को पता होता है कि आपकी मन की चाहत क्या है। जब सवेरे सवेरे चले तो मैंने ही सबसे कहा कि भाई एक एक जोड़ी कपड़ा बैग में डाल लो, कहीं मौका लगा तो झट से एक डुबकी लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ गंगा ही गंगा है। और देखिए भगवान ने कैसा हमारा साथ दिया। हमारा टैक्सी वाला

0: कहता है कि मुझे पेट्रोल डलवाने जाना है, आधा घंटा आपको कहीं वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई हमें गंगा घाट पर उतार दे, तू आराम से पेट्रोल भरवा के आ गाड़ी में। और उस टाइम में हम सब ने जी भर के गंगा स्नान किया और सच में सबके नाम की डुबकियां लगाई मैंने कि भगवान सबका कल्याण करे और सबके पापों को धो दे, सबको सद्बुद्धि दे। तो सबसे पहले ही जो मन की ख्वाहिश थी वो हरिद्वार से ही पूरी हो गई। आगे का हाल क्या हुआ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बहुत खूबसूरत सा गाना मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म से सुनवाया मैंने ये गाना, और उसके लिए वजह यह है कि आज ही के दिन 2011 में जब जगजीत सिंह 70 इयर्स के थे इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, यानी कि आज उनकी पुण्यतिथि है, और इसलिए इस गाने को बजाकर आज हमने जगजीत सिंह को याद किया और ये गीत उनके सारे फैंस के नाम पर गया।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: और बहुत सारे साथियों का कहना है कि आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपको कोल्ड हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल कोल्ड हो गया है, और आजकल एंटीबायोटिक्स पे हूँ, क्योंकि भारत जाकर मैं पूरी मस्ती करती हूँ, परहेज वरहेज सब भूल जाती हूँ, और गंगा नदी में स्नान किया, इतना ठंडा पानी था कि जब पैर डाला तो लगा हो बाप रे करंट मारती है, लेकिन ये अवसर गंवाना नहीं था, इसलिए मार दी डुबकी, और एक नहीं कई डुबकियाँ मारी, सिर तक गीला किया, और फिर बाद में ठंड नहीं लगी, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैंने किया, और पहली बार गंगा में नहाई थी। मुझे सब लोग कहते थे तू पापन है इसलिए तू गंगा में नहा नहीं पाती लेकिन इस बार मैं अपने सारे पाप धोकर आई हूँ और गंगा में खूब डुबकियाँ लगा कर आई हूँ, तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और आप सबको सुनकर अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम जब हरिद्वार से चले तो हम ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश में हमने नाइस स्टे किया, और उसके बाद हम चल दिए रुद्रप्रयाग की ओर, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र था। भगवान बिल्कुल कहते हैं ना, भारत का एंड जहाँ पर है और उसके आगे थोड़े ही 5 किलोमीटर बाद वहाँ चाइना की सीमा लग जाती है, वहाँ जाकर उन्होंने अपना बसेरा बिठाया है, तो इतनी दूर तो जाना ही पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा ट्रेवल किया। और जानते हैं जब हम रुद्रप्रयाग पहुँचे, रात को सोए, सवेरे उठ के देखा बारिश हो रही थी, हमने कहा ओ तेरे की, अभी तक तो इतना अच्छा मौसम था, अब यहाँ बारिश क्यों शुरू हो गई। और बस जैसे जैसे दिन चढ़ा बारिश तेज होने लगी, और पहाड़ों की बारिश तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन इतनी तेज बारिश, ऐसे लगता था जैसे हजारों नल खोल दिए और बिल्कुल सीधी बारिश, वो बिना किसी हवा के। और थोड़ी ही देर में खबर आई कि बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गई है, बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों की यात्रा बंद हो गई है। बस फिर किया था, मायूसी पसर गई, इतना मन में दुख हो गया कि हे भगवान क्या कर रहे हो, इतनी दूर बुलाने के बाद भी दर्शन नहीं दोगे क्या। बस मन में एक उलझन, यही प्रार्थना, ओम नमः शिवाय, भगवान सब कुछ ठीक करो, सब कुछ ठीक करो, सभी कहने में लगे। और जब नेक्स्ट डे हम थोड़ा और आगे पहुँचे तो पता चला कि बद्रीनाथ धाम के द्वार खुल गए हैं, रास्ता ओपन हो गया है। बस फिर क्या था, टैक्सी वाला बोलता है चलिए बद्रीनाथ धाम आपको देखा कर लाता हूँ, और हम केदारनाथ की जगह बद्रीनाथ की तरफ मुड़ गए। और तभी तो जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश ही हो रही थी, बारिश ही बारिश थी, बहुत ठंडी थी, और ऐसे ठंड में नंगे पांव मंदिर में जाना, पैर गल रहे थे, लेकिन वो एक मन में भाव था ना दर्शनों का, उसने कुछ महसूस नहीं होने दिया, और बारिश में ही रेनकोट पहनकर हमने भगवान के दर्शन भी किए और फोटोग्राफ्स भी ली, क्योंकि मेमोरी तो क्रिएट करनी ही थी ना। और देखिए भगवान साथ था, जब बद्रीनाथ से लौटे ना तो रास्ते में कोई लैंडस्लाइड मिली, और जब वापस रुद्रप्रयाग आए तो पता चला कि केदारनाथ की यात्रा भी कल से खुलने वाली है। कहा कि ईश्वर सच में साथ है, और बस यही लगा कि खुल जाए, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए, और हमें केदारनाथ के दर्शन हो जाए। बताऊंगी आगे क्या हुआ, लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको,
1: ये है Like a Gold, The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold Greater London. Brought to you by Southall
0: Travel. तो भाई दुबई के लिए आपको बिना ज़्यादा प्राइस दिए हुए अच्छी खासी टिकट्स मिल रही हैं, साउथॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए, अच्छे एक्सक्लूसिव डील्स उनके पास हैं, जिसमें होटल्स भी हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी विद एमिरेट्स, फ्रॉम जस्ट 629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं 10 दिसंबर तक, उन्हें अभी कॉल कीजिए ऑन 0208 843 4444 पर, या फिर विजिट कीजिए southalltravel.co.uk पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
2: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: Something new has just landed at Cakebox. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cakebox celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
6: What food me dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family, ya special night out. Isi yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923 227274. Book your table today.

0: अभिमान फिल्म का ये गाना लीजिए मालती जी को डेडिकेट करते हैं, जो कहती हैं कि ये गाना बजाकर आपने मेरा दिन बना दिया। यस, ब्यूटीफुल गाना लता जी और मनहर उदास की आवाज़ों में। और आज ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने आप सुनेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि आज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की भानु गणेशन रेखा, या कहूँ खूबसूरत रेखा, अपना जन्मदिन मना रही है। यस, आज ही के दिन बोर्न, 10th अक्टूबर 1954 में बोर्न रेखा जी, आज 72 ईयर्स की हुई हैं, इसलिए आज हम उन्हें ही याद करेंगे यादें में, और उनके ही पिक्चर आइज कुछ गाने और उनके बारे में कुछ बातें आप सुनेंगे। और अपने यात्रा के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी अब प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में, क्योंकि अभी भी आप सब बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, तो ज़रूर बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। लेकिन फिलहाल
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए, 163 बांग्लादेशी टकास एंड 1.3 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 109.94 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
7: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
6: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th and 25th October फ्रॉम 7:30 PM onwards.
7: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th and 25th October 2 PM to 4 PM.
6: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
2: Celebrate with Haldirams.
3: Punjabi chole, rajma rasila, yummy dal makhni, aloo matar, sarson da saag and more.
2: Festive favorites ready to eat. Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
4: Haldirams.
5: Like a radio network. Proud hospitality partner. Ragasan.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
5: Ritu Sharma, live on Laika Gold, Greater London.

0: जी नहीं, हमारी मुलाकात तो अभी और लंबी चलने वाली है, लेकिन आपको बता दूं कि ये गाना आज मैंने आपको इसलिए सुनवाया है क्योंकि आज ही के दिन गुरुदत्त, जाने माने कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस दुनिया को छोड़कर गए थे, और वो भी सिर्फ 39 ईयर्स की एज में। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए कोशिश करूंगी कि आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स में दो गाने उन्हीं की फिल्मों से चुनूं। देखते हैं हो पाता है या नहीं। लेकिन आपके मैसेजेस बता रहे हैं और आपको मेरी यात्रा के बारे में सुनकर अच्छा लग रहा है, तो जरूर बताऊंगी प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में और भी बातें, ताकि आप भी प्लान कर सकें और आप भी वो सब अनुभव कर सकें जो मैंने किया है। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में होंगी यादें, जिसमें आज हम याद करने वाले हैं भानु गणेशन रेखा, यानी कि रेखा को, जिनका आज जन्म दिवस है और आज वो 72 यानी कि 72 ईयर्स की हो गई हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा रही हैं, तो कुछ बातें और उनके कुछ गाने सुनवाऊंगी आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मिलते हैं आपसे।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. Donald Trump's announced a deal with Vladimir Putin to release millions of barrels of Russian diesel to the global market. Ukraine's president's called the move weak and a gift for Putin. Hours after the announcement, Moscow launched a series of strikes on the Zaporizhia region, where at least 8 people have been killed. The Orange Order says it'll seek urgent meetings after a contentious march was banned. Its parade through Portadown's mostly nationalist Garvaki Road has been the subject of a 12-day standoff. Northern Ireland Secretary Sir Chris Bryant intervened last night to block it. Brendan McKenna is from the Garvaki Road Residents Coalition.
3: We don't view it as a victory, but as a starting point, because there are relationships within Portadown that need to be built and rebuilt.
2: Hurricane Isaias has made landfall along the US Gulf Coast, grounding flights and leaving more than 500,000 without power. Over 100 mile an hour winds have been recorded, with forecasters warning of potential flooding and tornadoes. Both Florida and Alabama have issued mandatory evacuations to thousands of people. NBC News correspondent Jesse Kirch is in the Destin in Florida.
4: It's a lot more wind than rain. There was a time where it was blinding rain as well, combined with that wind, but now we are still seeing some precipitation, feeling some misting occasionally, but by and large this appears to be a wind event right now, and we'll see the full effect of the storm surge when the sun comes up.
2: Campaigners want the competition watchdog to look at whether drivers are being ripped off by airport drop-off prices. The average UK fee is now £7. Firefighters have tackled a huge blaze overnight at a scrapyard in Glasgow. No casualties have been reported, but people are being urged to avoid South Street. And the Queen's revealed the King will roar with laughter while reading as she fronts a new show about literature. The book that changed my life explores the power of reading, with Camilla meeting 4 people whose lives have been transformed by it. From Sky News, I'm Chris Milligan.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: Need anything from Tesco? What about some goat's cheese? The kind that's been matured by expert cheesemakers here in West Country Caves, using 100% British goat's milk for a richer flavour.
6: We delve into the caves of the West Country for our award-winning finest goat's cheese. And now it's just £3.70 with your Tesco club card. The quality you need around the corner, because every little helps. Selected larger stores ends 27th of October. Club card or app required.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: गुड मॉर्निंग, आइए बात कर लेते हैं आज के मौसम की। लंदन में आज मिलाजुला मौसम रहने वाला है, कभी धूप कभी छांव, मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्रीज तक रहेगा। मैनचेस्टर में आज हल्की बारिश होने की संभावना है, मैक्सिमम टेम्परेचर 13 डिग्रीज, और मिडलैंड्स में आज 13 से 15 डिग्रीज के बीच में ही जाएगा अधिकतम तापमान।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Ritu Sharma.
0: जी हाँ, ये है प्रोग्राम का सेकंड आवर जिसमें होती हैं यादें, और आज की यादें में हम उनके बारे में बात करेंगे जिनकी लाइफ हमेशा ही कंट्रोवर्सी से भरी रही, जिन्हें हम रेखा के नाम से जानते हैं क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। सुनवाती हूँ उनकी फिल्मों के दो गाने बैक टू बैक।
7: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
8: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
9: TravelHub.
8: At all protected.
7: Leica. Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold.

0: रामपुर का लक्ष्मण 1972 की फिल्म जिसे लिया था ये गाना, और ये फिल्म थी रेखा जी के करियर के उन दिनों की जब वो एक बड़ी हीरोइन नहीं बनी थी। लेकिन परदेसिया फिल्म जब आई थी तो उनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी सुपर हीरो हो चुकी थी और रेखा अपने आप को एक अच्छी हीरोइन साबित कर चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रेखा जी के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा चलती रहीं और ये उनके बचपन से ही थी। आपको बताते चलें कि 1970s की एक शानदार हीरोइन तो रही ही हैं, इनके फादर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी थे जिनका नाम जेमिनी गणेशन था। कुछ ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स में उन्होंने काम भी किया है और इनकी माँ भी जो तेलुगु फिल्म की इंडस्ट्री की एक बड़ी हीरोइन थी और जिनका नाम था पुष्पावली, शायद आप में से किन्होंने उनकी फिल्मों को भी देखा होगा। और एक बात सुनने में आई कि जब रेखा जी का जन्म हुआ था तो इनके पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी और बहुत अरसे तक जेमिनी गणेशन ने रेखा जी को अपना नाम भी नहीं दिया था। लेकिन जब रेखा सुपरस्टार बनी तो उनके जो फादर थे उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई और ये उन्होंने अपनी नाराज़गी जो थी वो मीडिया के सामने जाहिर की और उसे ख़त्म भी कर दिया और रेखा जी को अपना भी लिया। लेकिन रेखा जी को अपनाने के बाद भी कोई आसान राह नहीं हो गई उनकी। हालांकि पेरेंट्स दोनों फिल्म इंडस्ट्री से थे लेकिन फिर भी रेखा जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया। हालांकि फिल्मों में काम तो उन्हें आसानी से मिल गया और उनकी पहली फिल्म सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें इंडस्ट्री में उस समय पसंद नहीं करते थे। रेखा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग उन्हें अगली डकलिन कहा करते थे, अगली डकलिन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय रेखा जी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था और वो काफ़ी चबी थी और बहुत लोगों का कहना था कि ये हीरोइन बनने लायक ही नहीं है, इन्हें फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। लेकिन रेखा जी ने इसे एज ए चैलेंज लिया और उसके बाद रेखा जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिस तरह से वो फिल्मों में नज़र आई, जो उनकी अदायगी थी, उन्होंने न सिर्फ फिल्म फेयर बल्कि नेशनल अवार्ड भी जीते। एक और बहुत सुंदर सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में। आज हम यादें में रेखा जी को याद कर रहे हैं क्योंकि आज रेखा का हैप्पी वाला बर्थडे है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन वो गीत सुनवाने से पहले आपको बता दें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: For breakfast worth taking time over, start with heart. Try our thick, creamy Yo Valley Organic Greek-style natural yogurt. Perfect for dolloping over warm pancakes or swirling into fresh berries. Proper breakfast, naturally delicious, whatever your breakfast looks like. Find your favorite in store today. Yo Valley Organic. Breakfast made with real heart.
3: Ye hai Laika Go.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: Plan your exotic dream holiday to Maldives, Mauritius, Bali, Zanzibar and many other destinations only on TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
7: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर. DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
8: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: एक अवार्ड विनिंग फिल्म का हिस्सा बनी रेखा। जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो लोगों ने कहा था कि इन्हें फिल्मों में कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन रेखा ने इसे एज ए चैलेंज लिया और देखिए न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स बल्कि इस फिल्म में उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हर एक्टर की तरह रेखा को भी इंतजार था राइट टर्न का। और जानते हैं वो राइट टर्न उनकी लाइफ में कब आया? जब उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ दो अनजाने फिल्म में काम किया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा जी की जोड़ी ऐसी बनी कि एक के बाद एक दोनों ने न जाने कितनी सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: चाहे वो मिस्टर नटवरलाल हो जिसका कि गीत मैं आपको सुनवा चुकी हूँ, या फिर हो मुकद्दर का सिकंदर, या फिर अपने जमाने की क्लासिक माने जाने वाली फिल्म सिलसिला।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: सिलसिला फिल्म से लिया था ये गाना, जिसे यश चोपड़ा ने बनाया था। और कई लोगों का मानना है कि फिल्म काफ़ी स्लो थी, और जब ये फिल्म आई थी तो लोगों को पसंद भी नहीं आई थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म माने जाने लगा, जिसका हिस्सा थी रेखा। और आज हम रेखा जी को याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। और कहने वाले कहते हैं कि रेखा की ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन एक सुनहरे चैप्टर की तरह आए, जिसे आज भी रेखा बहुत चेरिश करती हैं। एक इंटरव्यू में जब रेखा जी से पूछा गया कि क्या वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। रेखा जी ने कहा कि ऐसा कोई इंसान बताएं जो अमिताभ बच्चन से प्यार ना करता हो, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं करती। उनका मतलब यही था। और अमिताभ बच्चन और रेखा का जो अफेयर था बहुत सुर्खियों में रहा, और आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी अवार्ड फंक्शन में रेखा जी बैठी हैं और अमिताभ बच्चन बैठे हैं तो रेखा जी कुछ कहती हैं तो सीधे अमिताभ बच्चन पर कैमरा जाता है, और अमिताभ बच्चन कुछ कहते हैं तो रेखा जी का एक्सप्रेशन कैच किया जाता है। यानी कि वो जो अफेयर था उसके बारे में जिज्ञासा, उनके एक्सप्रेशंस लोगों को आज भी जानने की चाहत है, क्योंकि किसी को सच नहीं पता कि क्या इंटेंसिटी वाला प्यार था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि ना तो कभी इसका जिक्र रेखा जी ने किया है और ना ही कभी अमिताभ बच्चन ने। एनीवेज, एक और बहुत सुंदर सा गीत सुनाने वाली हूँ, आप यादें सुन रहे हैं, जिसमें आज हम याद कर रहे हैं आप सबकी फेवरेट रेखा को।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: This is Ritu Sharma.
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, like a gold and like a radio Midlands.
4: Like a extra podcast update.
0: To like a extra. पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड, जिसे होस्ट किया है सैंडी शाह ने, और आप सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
4: लाइक अ एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: टेक द फस आउट ऑफ बिजी मॉर्निंग्स एंड स्टार्ट विद हार्ट विद अ थिक क्रीमी बाउल ऑफ यो वैली ऑर्गेनिक ग्रीक स्टाइल नेचुरल योगर्ट, simple honest ingredients to set you upright. Or try our velvety Yo Valley organic strawberry yogurt, deliciously wholesome for big hearts and little ones. Real fruit, nothing artificial. Whatever your breakfast looks like, find your family's favorite in store today. Yo Valley organic breakfast made with real heart.
6: Like our goat. 073-00-99-8823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823।
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
7: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: London, तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
10: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
9: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
10: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
9: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
10: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
9: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
10: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा। The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with Southeast Gujarati Association, SEGA, on Sunday, 11th October at White Hart Road, London, SE181DG. Come along and celebrate the spirit of Navratri with us.
11: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. A taste of tradition in every celebration. Loved by generations since 1970.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.

0: बिल्कुल, रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में जुदाई फिल्म से था ये गाना, जिस फिल्म में रेखा जी के साथ थे जितेंद्र, और रेखा की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ साथ जितेंद्र से भी बहुत जमी है। दोनों ने बहुत बढ़िया फिल्मों में काम किया है 80s के दौर में। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि रेखा या तो नन या फिर एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी। फिल्मों में अभिनय करने में उनकी ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। बचपन में वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर आयरिश नंस हुआ करती थी, और वो उनसे इतने प्रभावित थी कि उनको लगता था कि मैं नन बन जाऊँ या फिर एयर हॉस्टेज बन जाऊँ, क्योंकि उन्हें सारी दुनिया घूमने का बेहद शौक था। आज रेखा जी 72 ईयर्स की हुई हैं, उनके चाहने वाले आज भी बहुत सारे हैं, और आज इसीलिए यादें में हम उन्हें ही याद कर रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए, 163 बांग्लादेशी टकास एंड 1.3 US डॉलर्स।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £101.9 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is Leica Gold.
3: Travel Hub, your safari specialist to Masai Mara, Serengeti and Cape Town with Kruger National Park. Call Travel Hub.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
3: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties.
8: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी, और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
9: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
8: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में।
9: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
8: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
9: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016।
8: दिवाली का जश्न अपनों के संग।

0: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
1: बीकानेर वाला परंपरा भी।
0: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
1: बीकानेर वाला।
2: Sunshine, skyscrapers and souks.
3: For less than you think. This is Affordable Dubai from South All Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: South All Travel. Pay less, enjoy more.
3: South All Travel. At all protected.
4: When you lose someone dear, a little support can mean so much. Om Funeral Care provides compassionate guidance, respecting your family's customs and traditions. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our priests conduct funeral rites in Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, English, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208 922 3344. Available 24 hours a day.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208 514 5400। Book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
11: Feel-good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: रेखा जी के गाने तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और आप में से कुछ गाने साथी फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन समय के हिसाब से हमें गीत को लगाना पड़ेगा। जी तो चाहता है कि कुछ और अच्छे गाने सुनाऊं, लेकिन जो समय के साथ फिट होता है वो है हमारा ये अगला गाना।
1: Reminisce those classics on Like a Gold.
0: और ये गाना लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ आई का।

0: किशोर दार की आवाज में खूबसूरत गाना 1981 की फिल्म याराना से लिया था, और उससे पहले तू तू है वही, ये वादा रहा 1982 की फिल्म। प्रज्ञा का मैसेज आया है, कहती है मैं गाड़ी में हूँ और इन्हीं गीतों की वजह से हम आपको मिस कर रहे थे। क्या बात है, आपका प्यार है, और जब आप ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी और आपकी पसंद काफी मिलती जुलती है ना। लेकिन थैंक यू सो मच, जिस तरह से आपने मुझे मिस किया है और जिस तरह से आज मैसेजेस भिजवाए हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। और आप सब कह रहे हैं कि लग रहा है कि आपको सर्दी हो गई है। हाँ, सर्दी तो हो ही गई, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ -3 टेम्परेचर था, और वहाँ पर नंगे पांव जाना, और फिर मौसम बदलता है तो सर्दी ज़ुकाम तो लग जाता है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जहाँ मैं होकर आई हूँ मुझे अभी तक बहुत खुशी है, और ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी तक वहीं हूँ। और आप सबसे भी कहूँगी कि अगर आपके मन में ड्रीम है तो बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि कुछ मैसेजेज मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, तो जब भोलेनाथ आपको बुलाना चाहेंगे तो वो यूं ही बुला लेंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे आपका प्रोग्राम बन गया और आप वहाँ चले गए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि यात्रा बहुत कठिन है, इसलिए सोच समझ कर जाइएगा, आसान बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो जाती है, बारिश हो जाती है, यात्रा बंद हो जाती है। तो अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं तो दिन लेकर जाइए। जैसे मेरे साथ तो भगवान थे, 6 दिन में मैं दोनों जगह बद्रीनाथ केदारनाथ हुआई। इम्पॉसिबल सा लगता है कि कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ लोग 10-10 दिन से रुके हुए थे और यात्रा 3 दिन के लिए बंद हो गई, फिर उन्हें मौका मिला, लेकिन हमारा 6 दिन में ही सारा काम हो गया। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए खुशकिस्मती वाली बात है। लेकिन आपको सजेशन यही दूंगी कि ज़्यादा दिन लेकर जाइए। और उत्तराखंड, इसे यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, बहुत सुंदर है, लेकिन बस थोड़ी सी बात है ना, जहाँ इंसान होते हैं वहाँ गंदगी वो फैला ही देते हैं, नहीं तो प्रकृति ने तो सुंदरता में कोई कमी नहीं रखी है। जहाँ नज़र डालिए वहाँ पर माउंटेंस हैं, और उन माउंटेन से कल कल करते हुए बहते, एक नहीं दो नहीं, अगर आप रोड पर जा रहे हैं और सामने वाले माउंटेन पर नज़र डालेंगे तो एक साथ 5-5, 6-6 वाटरफॉल आपको बहते हुए मिल जाएंगे। और वो कहाँ से निकल रहे हैं, पहाड़ों के छेदों में से इतने विशाल झरने बह रहे हैं, और नीचे आपके साथ पूरे समय कल कल करती हुई गंगा, जहाँ पर कहीं उसका नाम मंदाकिनी है, कहीं उसका नाम अलखनंदा है, कहीं पर उसे भागीरथी कहा जाता है। दूध सी सफ़ेद गंगा, साफ सुथरी, हर जगह आपको पत्थरों के बीच में से बहती हुई मिलेगी, इतना खूबसूरत नज़ारा। और ये देखकर यही लगता है कि भगवान शंकर ने वाकई में अपना धाम स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पर ही बसाया है। और आपको बता दूं कि जब हम यात्रा के लिए गए ना, तो सभी ने मुझसे कहा कि हेलीकॉप्टर बुक करा लेते हैं या फिर घोड़े से चलते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ये प्रण किया था कि मैं पैदल जाऊँगी, भगवान मुझे ज़रूर इतनी शक्ति देंगे कि मैं यात्रा पैदल कर पाऊँ, क्योंकि इतना पैदल कभी नहीं चली, 22 किलोमीटर्स, वो भी चढ़ाई आसान नहीं है। लेकिन न जाने कहाँ से भोलेनाथ ने मुझे शक्ति दी और मैं पैदल यात्रा की पूरी। और आपको बता दूं कि यात्रा करने के बाद मुझे कहीं कोई थकान नहीं, कहीं कोई पैरों में दर्द नहीं, आज दिन तक मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि मुझे चढ़ाई से या पैदल चलने से हुई हो, ये सब उन्हीं की कृपा है। और मेरी इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊंगी, बाकी लोगों ने घोड़ा किया, पालकी भी की, लेकिन मैंने जो सोचा था वो किया और मैं पैदल गई, और ये सब भगवान की ही कृपा है। लेकिन आप सब सोच समझ के जाइए, हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से जाइए, लेकिन अगर आपकी सच्ची में इच्छा है तो भगवान आपको ज़रूर बुलाएंगे। और बस आप सब के मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपकी यात्रा सुनकर हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि हम आपके साथ हैं। तो बस मन में विश्वास रखिए, वो है ना ऊपर वाला, हमेशा आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आपको मैं बताती चलूं कि इस वाले आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, और आज के जो 3 वर्ड्स हैं, तैयार हैं बताने के लिए कौन सा गाना है? तो आज का जो पहला वर्ड है वो है सपने, दूसरा वर्ड है गले, और तीसरा वर्ड है अपने। बहुत ही आसान गाना है, 1964 की ये फिल्म है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और रफ़ी साहब की आवाज़ है। अगर आपको पता है तो बताइए कौन सा है ये गाना। आई रिपीट, सपने, गले, अपने, 1964 की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, रफ़ी साहब की आवाज़। और अगर आपको पता है तो अपना मैसेज भिजवाइए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग दी योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: I can't believe it. Max has asked me to move in with him.
3: I mean, you practically live with each other already, but that's great. Did you hear that, Joe?
4: Yes, thanks for letting us know. I see you've updated your universal credit claim. Now you're going to be living together.
5: If you've moved in together, taken on more clients, or inherited some money, it can affect your universal credit. If you're telling someone else, tell us too. Search Tell DWP.
6: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM. Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with TravelHubWorld.com.
7: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.

0: अपने जमाने के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त के बेटे आनंद मिलिंद, जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक दिया था और इस तरह की अनेकों फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया है। इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है और उन्हीं की फिल्म से, उन्हीं के म्यूजिक से सजा हुआ ये गाना था, जिसे आवाज दी थी अभिजीत भट्टाचार्य ने।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज गुरुदत्त की फिल्म्स के दो गाने सुनवाऊंगी, क्योंकि आज ही के दिन गुरुदत्त सिर्फ 39 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, एक्टर गुरुदत्त, जिन्हें कौन नहीं जानता, कौन इनकी फिल्मों का फैन नहीं?

0: नहीं है। यूं तो बहुत अच्छे अच्छे गाने और बहुत ही क्लासिक फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं, लेकिन आज इनकी फिल्मों के दो गाने। पहला गीत आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गुरुदत्त की ही फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रफी साहब की आवाज में ये गाना गुरुदत्त पर पिक्चराइज तो नहीं था, लेकिन गुरुदत्त वहां मौजूद थे। जॉनी वॉकर पर ये गाना पिक्चराइज किया गया था और उनकी एक शानदार फिल्म 14वीं के चांद से लिया था ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Aur ye tha hamare aaj ke black and white classic ka pehla gana.
1: Riti Sharma on Like a Gold.
0: Aur dusra geet sunwane se pehle main aapko yaad dila dun ki Laika Radio Network साउथ एशियन फिल्म्स के साथ मिलकर आपको दिखाने जा रहे हैं 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जो स्क्रीन होंगी आपके पास के सिनेमाघरों में। कभी कभी संडे 11th अक्टूबर को दिखाई जाएगी और दिल चाहता है संडे 18th अक्टूबर को दिखाई जाएगी। अपने टिकट्स बुक कीजिए showcasecinema.co.uk पर या फिर आप जा सकते हैं showcasecinema.co.uk/SAFFUK.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: Like a
1: Radio. Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds.
0: और अब सुमन कल्याणपुर नहीं, शमशाद बेगम की आवाज में अगला गीत।

0: यस, शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आर पार से था ये गाना, जो गुरुदत्त की फिल्म थी जिसमें उनके साथ काम किया था श्यामा ने। गुरुदत्त जिनका असल नाम तो था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, लेकिन फिल्मों में गुरुदत्त के नाम से खूब नाम कमाया। जन्म तो इनका जुलाई में हुआ था, लेकिन सैडली आज ही के दिन 1964 में सिर्फ 39 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़कर गए थे। इसलिए आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स में हमने दोनों गाने उन्हीं की फिल्मों से आपको सुनवाए, जिन्हें आप सबने पसंद भी किया। सो थैंक यू आप सभी के ढेरों मैसेजेस मिले हैं, और आप में से बहुत सारे साथियों ने, या कहूँ सभी ने, आज के गाने को बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है, लेकिन उस जवाब को बुलाने से पहले मैं दो डेडिकेशन ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। एक तो भेजा है दक्षा जी ने, जिनकी भाभी आज 60th अपनी बर्थडे मना रही हैं। तो दक्षा जी की भाभी, आपको आपकी 60th बर्थडे की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और इसके अलावा हमारी जासू जी ने भी मैसेज भेजा था, आज उनके घर में भी उनके ब्रदर इन लॉ हैं, आई थिंक उनके ब्रदर इन लॉ हैं जिनका नाम है शैलेश कुमार, आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं। पूरी फैमिली उन्हें विश करना चाहती है, जिसमें शामिल है राम, जासू जी, नरेंद्र, रीतन, सूजी, फाल्गुनी एंड जय। तो आप दोनों को आपके जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और अब बता दूँ कि कितन साथियों ने हमारे आज के थ्रीवर्स गेम वाले गाने को सही सही पहचान लिया है। तो जिन्होंने सही पहचाना है उनके नाम है दिनेश पोपट जी, वत्सला जी, नरेन पटेल, हाजरा, उल्लास, रजनीश, मनीषा शाह, अयूब चौहान, दिव्या हैरो से भारत गंगाराम जी, राजीव पटेल, विजय गुडूरी जी, रोशनी जी, गिरीश जी, अनिल जी, स्टूडम अनिल स्टूडम से करी खरसन पिंडौरिया जी, अर्जुन जी, के भामरा जी, तोची जी, उषा खोड़ा, मालती जी फिंचली से, कुकी जी एंड ऑफ कोर्स हमारी सहर। आप सभी का जवाब सही है। तो जवाब सही है तो फिर देर किस बात की, सुनवाती हूँ आज के थ्रीवर्स वाला गाना आपसे बस थोड़ी ही देर में। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. लेकिन उससे पहले बता दें कि आपका भी अगर मन हो गया है हॉलीडे जाने का, तो दुबई के लिए बहुत बढ़िया आपको डील्स मिलेंगी साउथॉल ट्रैवल से, जिसमें फ्लाइट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, और आपको मिल सकता है 629 पर पर्सन फॉर 3 nights अगर आप ट्रैवल करते हैं बाय 10th December। उन्हें कॉल कीजिए 0208-843-4444 पर, या फिर विजिट कीजिए southalltravel.co.uk। Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
1: I can't believe it. Max has asked me to move in with him.
2: I mean, you practically live with each other already, but that's great. Did you hear that, Joe?
3: Yes, thanks for letting us know. I see you've updated your universal credit claim. Now you're going to be living together.
4: If you've moved in together, taken on more clients, or inherited some money, it can affect your universal credit. If you're telling someone else, tell us too. Search Tell DWP.
5: We hit like our gold.
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
11: Sunshine, skyscrapers and souks.
12: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
11: Flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
12: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
11: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
12: Southall Travel. At all protected. protected. London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
13: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.

0: लीजिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, अप्रैल फूल फिल्म से लिया था हमने ये गाना, जिसमें शंकर जय किशन का म्यूज़िक था। और ये गाना इतना पॉपुलर है कि कोई गलत कैसे बता सकता था, इसलिए आज सभी ने इस गाने को, इनफैक्ट कुछ लोगों ने कहा कि तो आज हमने तो गूगल भी नहीं किया, वैसे ही आंसर बता दिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये गाना आपने इंजॉय किया होगा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए, 163 बांग्लादेशी टकास एंड 1.3 US डॉलर्स।
3: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 101.9 pounds per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
0: तो लीजिए अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, क्योंकि आपका और मेरा साथ आज के लिए बस यहीं तक। आज मैंने आपको अपनी यात्रा के बारे में बहुत सारी बातें बताई और आपके मैसेजेस मिले और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लगा कि जैसे हमने आपके साथ यात्रा की हो। तो ये तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, बहुत कम चीज़ें बताई। कल मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, तो कल का प्रोग्राम भी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे बाद इस शो में अनुराग आपका साथ देंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। आज आनंदी की जगह हमारे बॉस राज बद्धन है 1 से 4 आपको एंटरटेन करने के लिए, और लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर फजीला होंगी 1 से 4 आपके साथ। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड थैंक यू आपके एडवाइस के लिए। आपने जो जो बताए हैं कोल्ड से निपटने के लिए, मैं वो सारे सॉल्यूशंस जरूर यूज करूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि ये कोल्ड कॉफ ज्यादा दिन तक मेरे साथ रहे। तो थैंक यू साथ देने के लिए, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
5: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए।
2: लाइका गोल्ड।
6: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I wouldn't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
7: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it.
8: This Diwali, celebrate with Shayona.
9: Enjoy Mathia and Chorafali. Mix and match any three for just £4.50.
8: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
9: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
8: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swad jit tehwar ne banave khas.
10: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
9: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
11: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
9: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
11: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
9: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
11: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Find the best deal for flights on Air India, Emirates, British Airways, Virgin, BIA and Sri Lankan Airline only with travelhubworld.com.
5: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 or 0208-782-8833.
4: Travel Hub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
6: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
7: Up next, Golden Rock with Unrock on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: LOVE, इसका मतलब तो सभी जानते हैं। आशा दाई और किशोर दा की आवाज में, नटखट आवाज में बल्कि मैं कहूंगा, कालिया फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, आडी बर्मन साहब का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने अपनी कलम में प्यार घोला है। वैसे इस फिल्म कालिया से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि पहली पसंद अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म की नहीं थे, टीनू आनंद साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, बड़े ही मशहूर लेखक इंदर राज आनंद साहब के बेटे हैं और बच्चन साहब के साथ बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है, बड़ी खट्टी मीठी सी सा रिश्ता भी रहा है। कई बार सेट पर अनबन भी हुई, कई बार एक साथ फिल्में खाने की कसम भी खाई। लेकिन फिल्म कालिया से जुड़ा हुआ किस्सा मैं आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चन साहब इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। इस फिल्म के लिए टीनू आनंद साहब के जहन में थे हिंदी सिनेमा के ही मैन यानी कि धर्मपाजी और विनोद खन्ना साहब, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म आकर गिरी बच्चन साहब की झोली में। यही नहीं, एक बार एक उर्दू का डायलॉग बोलते वक्त जब बच्चन साहब ने सेट पर रिटेक्स लिए, इस बात से लेखक इंदर राज आनंद साहब जो टीनू आनंद साहब के पिता हैं, उन्होंने एतराज़ भी जाहिर किया था। बाद में इसी सीन को, इसी डायलॉग को बड़े ही परफेक्शन के साथ शूट किया गया। बच्चन साहब ने बता दिया कि क्यों वो हैं हरिवंश राय बच्चन साहब के बेटे। और ये तो भाई फिल्म से जुड़े हुए किस्से थे ही, लेकिन एक और रुकावट रही जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी दिनों तक होल्ड पर रही। वजह क्या थी? प्रवीण बाबी जी जो उन दिनों अपने बीमारी के चलते देश छोड़कर बाहर गई थी अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन टीनू आनंद साहब बड़े बेचैन थे, उनको ऐसा लग रहा था ये फिल्म तो गई डब्बे में। लेकिन बच्चन साहब ने कहा किसी और एक्ट्रेस को लेने से बेहतर है कि आप प्रवीण का इंतज़ार करें, और वही हुआ। बच्चन साहब का विश्वास जो था वो कायम रहा और पूरा भी हुआ। प्रवीण वापस लौटी और उन्होंने फिल्म की शूटिंग की और इसके साथ फिल्म हुई कंप्लीट और बच्चन साहब ने यादगार अभिनय किया इस फिल्म में। ये था छोटा सा किस्सा इस फिल्म से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ेंगे और अगला गीत आपको सुनाएंगे फिल्म आनंद से। कौन सा गीत आने वाला है सोचते रहिए और सुनते रहिए वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 rupees and 50 paise। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At OXO, we know us Brits can be rubbish at saying how we really feel. Sometimes food just says it better. Whether it's a spag bol peace offering, a date night risotto, or some chicken soup TLC. You can say it without saying it. We've got you. Just crumble in some of that original OXO flavour for a meal that means a whole lot more. OXO. Let the flavour do the talking.
3: This is Like a Gold.
4: In times of loss, Om Funeral Care is here with compassion and support. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our experienced priests guide families through funeral rites in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day. Om Funeral Care. Honoring your loved ones.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Khakra Crunch Bhakri Munch. Chikki Sweet Papad Beet Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
2: Add Desi Tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen Papad Pickles Chikki Pot Meals and much more.
1: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
7: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
6: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
7: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंटब्राइट और फैक्सोमा.
6: कॉल प्रथम पटेल 07838302450.
8: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
7: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
8: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
7: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
8: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
7: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG.
8: टिकट बुक करो segalondon.co.uk.
7: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा.
9: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
10: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
11: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
13: Nein, nein.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mukesh sahab ki awaaz mein Anand film ka dil ko aanandmay karne wala ye super hit geet ऑलवेज आप इसे पसंद करते हैं जब भी आप इसे सुनते हैं, लेकिन अगला गीत जो अपने कार के विंडो ऊपर कर लीजिए, रोल अप कर लीजिए, क्योंकि ये गाना बिल्कुल एक आनंद में सुनने वाला है किशोर दा की आवाज में, मेरे जीवन साथी फिल्म से।
1: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: हो मेरे दिल की चैन आप हमेशा सुनते होंगे और कितने भी इसके रिमिक्स वर्जन आ जाएं, कितनी भी बार इसे तोड़ा मरोड़ा जाए, लेकिन ओरिजिनल जो किशोर दा ने गाया है उसका कोई मुकाबला नहीं। वैसे ही अगला गीत भी आशा दाई और रफ़ी साहब की आवाज़ में, कुर्बानी फिल्म का ये गाना है, लेकिन इस गाने को सुनने के लिए आपको किसी भी तरह की कुर्बानी नहीं देनी है, सिर्फ साथ देना है लाइका नेटवर्क का।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: पिया तो से नैना लागे रे, लता जी की आवाज में बेहद ही खूबसूरत गीत गाइड फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। और अगले गाने के बाद हम आपको बताएंगे कि कब जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती, क्योंकि आने वाला है आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.05 अफगानी 87.38, पाकिस्तानी रुपीज 366, बांग्लादेशी टका 163.16, श्रीलंकन रुपीज 437.79 एंड 1 US dollar 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: आशा दाई और महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाजों में ऋषि कपूर साहब और रति अग्निहोत्री जी के ऊपर फिल्माया गया खूबसूरत सा गीत तवायफ फिल्म से था। और इससे पहले जो हमने आपको गीत सुनाया था, हम दिल दे चुके सनम, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टार फिल्म थी। और ये दोनों गीत हम तक पहुँचाए थे। सबसे पहले बताता हूँ, हम दिल दे चुके सनम किसी ने हम तक नहीं पहुँचाया, ये हमने आपको गोल्डन राग की तरफ से सुना है। और दूसरा गाना तवाय फिल्म का हम तक पहुंचा है अमित गुप्ता जी और साधना भदौरिया जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। आज का गोल्डन वर्ड एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो है शर्म और हया। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं भारतीय मुद्रा में 127 रुपीज़ एंड 50 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Sorry for the voice note, but can we get a takeaway tonight, Mum?
3: Oh, no, no. We've got leftovers in the fridge. They'll do it. It'll be nice.
4: Sorry. I've eaten it. Who's for pizza?
5: Pizza!
6: Sure, we can give you lots of data, but what really matters is friends and family. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected. Terms apply. See tescomobile.com/ytescomobile.
7: Ye hai.
8: Leica Gold.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Fall in love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
11: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
11: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
12: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
13: Craving the taste of home this festive season?
14: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
13: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today.
15: Haldiram's.
16: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
17: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
16: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th and 25th October फ्रॉम 7:30 PM onwards.
17: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th and 25th October 2 PM to 4 PM.
16: फॉर टिकट्स एंड मोर इंफॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
18: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
19: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
18: Not with SIMZI. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
19: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
18: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
19: SIMZI, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SIMZI.com. Terms apply.
20: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
21: बीकानेर वाला परंपरा भी,
22: स्वाद भी।
20: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड, बीकानेर वाला। इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी। बीकानेर
5: वाला। Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from South Old Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: South Old Travel. Pay less, enjoy more.
7: South Old Travel. At all protected.
8: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
15: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
21: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kishore Da ki awaaz mein sharmili film ka ye khoobsurat sa geet aur ye geet hum tak pahuncha hai Santosh ji aur Bhavisha ji ne. Bahut bahut shukriya Bhavisha ji, naam bahut acha hai aapka waise. Sunte rahe weekend wali paathshala Anurag ke saath.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप. हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल.
2: ट्रेवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग. साउथोल ट्रैवल के साथ अफोर्डेबल दुबई ऑफर में आपको मिलेगा कंबाइन एक्सक्लूसिव डील टू सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स. Direct flight Emirates की तरफ से from just 629 per person for 3 nights. Travel by 10th December. Call Southall Travel on 0208843444 or visit southalltravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel.

0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आपकी वजह से ये गीत, ये सॉन्ग मुझे भी सुनने को मिला, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत। और इस गीत को सबसे ज़्यादा हम तक लोगों ने अपनी फरमाइश के पिटारे से निकाल कर भिजवाया है। जल्दी से नेम नाम लेते हैं उन सभी का, शर्म आती है मुझे। साइदा जी, साइदा मुगल जी, गिरीश पंजवानी जी, हंसा मिस्त्री जी, अमर साहब, विजय गोदोरे, उल्लास जी, हंसुमती जी, वत्सला जी, टोची पनेसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक आधे नाम रह गए होंगे, आई नो दैट, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा ये गीत हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गीत आ रहा है इन्हीं की छोटी बहना यानी कि आशा ताई की आवाज़ में। गाना कौन सा होगा, फिल्म कौन सी होगी, गेस कीजिए। थोड़ा सा ही वक्त है आपके पास।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.98, अफगान अफगानी 87.51, पाकिस्तानी रुपीस 366.47, बांग्लादेशी टका 163.14, श्रीलंकन रुपीस 437.76 एंड 1 यूएस डॉलर 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Like a Gold, non-stop classics.

0: जोशीला फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आशा राय की आवाज़ में, मैंने कहा था ना कि छोटी बहना की आवाज़ आएगी अगले गीत में, और ये गीत हम तक पहुंचाया है सोमिला मुंगुर जी और रितु बाली जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगला गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है, बड़ा ही कमाल का नाम है ये, अक्सर आप सुनते होंगे लोग मजाक भी करते रहते हैं। फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, और इस खूबसूरत से गीत को, बल्कि ये कहेंगे अजीबो गरीब गीत को अपनी आवाज़ दी है किशोर दा ने। तुम कितनी खूबसूरत हो, इसमें भी शर्म का लफ्ज आता है, और ये गीत हम तक पहुँचाया है निर्मला जी ने। और आप इंतज़ार कीजिए, अब अगला आवर जो है वो है दिल की बत्ती जलाने का, सुनते रहे वीकेंड वाली पाठशाला।
1: लाइका गोल्ड,
2: वाओ आटला स्वादिष्ट मठिया ने घोघरा शू घरे बनाव्या छे?
3: ना रे, आ तो शायोना माथी लाव्या छे।
2: वाह, तो आ मिठाई ने फरसाण पण शायोना ना ज हशे ने?
3: हां बिल्कुल,
4: सेलिब्रेट द फेस्टिव सीजन विद शायोना, एंजॉय क्रिस्पी मठिया, डिलीशियस घोघरा, सेवरी फरसाण एंड माउथ वाटरिंग मिठाई। विजिट शायोना शॉप्स और श्री स्वामी नारायण मंदिर नीजडन, ऑल्सो अवेलेबल एट सिलेक्टेड मॉरिसन्स, सेन्सबरीज एंड टेस्को स्टोर्स, और शॉप ऑनलाइन एट shayonauk.com। शायोना, स्वाद जे त्यौहार ने बनावे खास।
5: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place.
2: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंटब्राइट और फैटसोमा।
5: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450।

0: भाई यादों के सिवा जिंदगी में रखा ही क्या है। लता जी और किशोरदा की खूबसूरत आवाजें और उनकी यादें। मसाल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। अब आ गया है मौका दिल की बत्ती जलाने का। पहले कायदे प्लस कानून आपको जल्दी से समझाता हूँ। तीन ऑप्शंस हम आपको गाने के देंगे, ए बी एंड सी, जो कि गानों के होंगे ऑप्शंस, जिनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है दिल की बत्ती जलाकर, और हम तक उस ऑप्शन को व्हाट्सएप के नंबर पर भेज देना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह बनेगा आज का गोल्डन राग, वो भी भारी मतों के साथ। तो चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं आज के गोल्डन राग के ये तीन ऑप्शंस। और ये ऑप्शंस इसलिए भी ख़ास हैं क्योंकि आज है किसी का हैप्पी वाला बर्थडे, एवरग्रीन जिन्हें कहा जाता है, और इनका नाम है भानु रेखा गणेशन, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं रेखा जी, जिनका है आज जन्मदिन। 10th अक्टूबर 1954 को इनका जन्म हुआ था मद्रास में। और इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हजारों लाखों लोगों का दिल जीता है अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी अदायगी के साथ। तो आज जैसे कि हमने आपको बताया कि रेखा जी का है हैप्पी वाला बर्थडे, तो हमने गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस भी उन्हीं की फिल्मों पे चुने हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग का, इन आंखों की मस्ती में, फिल्म का नाम उमराव जान। ऑप्शन बी है मेरे साथी जीवन साथी, फिल्म का नाम है बाजी। और ऑप्शन सी है दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, फिल्म का नाम है कर्तव्य। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए इन आंखों की मस्ती में फ्रॉम द फिल्म उमराव जान, ऑप्शन बी मेरे साथी जीवन साथी, फिल्म का नाम बाजी, और ऑप्शन सी दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, फिल्म का नाम है कर्तव्य। अपना कर्तव्य निभाएं और हम तक अपने ऑप्शन को वोट समझकर वोट कास्ट करना शुरू कर दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजने के लिए आज एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में भारतीय मुद्रा में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold.

0: सानुदा की आवाज हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक आनंद मिलन जी के संगीत के साथ हीरो नंबर वन फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, और एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करने जा रहा हूँ आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जो सुन नहीं पाए, इस बार ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए है आज के गोल्डन रॉक का इन आंखों की मस्ती में, फिल्म का नाम है उमराव जान। ऑप्शन बी है मेरे साथी जीवन साथी फ्रॉम द फिल्म बाजी। ऑप्शन सी है दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, फिल्म का नाम है कर्तव्य। और ये तीनों गाने हैं हमारी बर्थडे गर्ल रेखा जी की फिल्मों से जुड़े हुए। अभी भी वोटिंग लाइंस ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Nutan ji ke upar film aaya gaya, Lata ji ki awaaz mein Saudagar film ka ek bada hi shandar sa nagma. Mujhe to bahut pasand hai, ummeed hai aapko bhi pasand aaya hoga. लेकिन याद रखें, लक्ष्य से ना भटकें, राह से ना भटकें, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें. अभी भी है ऑप्शन आपके पास वोट कास्ट करने का. आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला, मैं हूं आपके साथ अनुराग.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइक रेडियो नेटवर्क है कंफर्म्ड पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट likeareadio.com.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: अब 60s से सीधे 50s की तरफ जाते हैं। गीता दत्त की आवाज में आपको सुनाएंगे अगला गीत और उसके बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए आज की बोर्डिंग लाइंस। आखिरी मौका, लगाते रहें चौका।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: At OXO, we know us Brits can be rubbish at saying how we really feel. Sometimes food just says it better. Whether it's a spag bol peace offering, a date night risotto, or some chicken soup TLC, you can say it without saying it. We've got you. Just crumble in some of that original OXO flavour for a meal that means a whole lot more. OXO. Let the flavour do the talking.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
5: डू यू नो यू कैन ओपन योर NRE एंड NRO अकाउंट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम बाय रिक्वेस्टिंग अस फॉर अ होम विजिट। यू कैन ऑल्सो विजिट एनी ICICI बैंक UK ब्रांच और कॉल अस एट 03444124444। यू विल बी ट्रांजैक्शन रेडी विद इमीडिएट एक्सेस टू अ डेबिट कार्ड एंड अ चेकबुक। जस्ट रीच आउट टू ICICI बैंक UK एंड दे हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर बैंकिंग इन द UK और इन इंडिया। ICICI बैंक UK.
6: ICICI बैंक UK इज ऑथराइज्ड बाय द PRA एंड रेगुलेटेड बाय द FCA एंड PRA.
7: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India. TNCs apply.

0: भाई अब वक्त आ गया है आपको आज के गोल्डन डक का की मुंह दिखाई कराने का, क्योंकि अब हो चुकी हैं आज के लिए वोटिंग लाइंस बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन डक। देखते हैं क्या सरप्राइज दिया आप लोगों ने एक दूसरे को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.79, अफगानी 86.56, पाकिस्तानी रुपीस 366.38, बांग्लादेशी टका 163.12, श्रीलंकन रुपीस 437.61 एंड 1 US डॉलर 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: इन आंखों की मस्ती के आशा थाई की आवाज, उमरा जान फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत और मोहम्मद जहूर यानी के खयाम साहब का संगीत तो कमाल तो होगा ही भाई, दिल में दस्तक तो देगा ही। जल्दी से लेते हैं नाम, किसने दिया इस गाने को वोट। संतोष जी, स्वीटी कालरा जी, सूरज फ्रॉम साउथ हॉल, फरीदा गुलाम अली जी, प्रतिभा जी, रानी सुनाहे, हरप्रीत सिंधु, हसुमती जी, फाल्गुनी, मुकेश भट्ट, रानी जी फ्रॉम स्लाव, विजय गुदोरे, मनोहर मनु जी, बलबीर कौर फ्रॉम केन्या, हंसा मिस्त्री जी, निर्मल क्रीट, कसन पिंडोरिया, नंदा प्रवीण, सोमिला मुंगुर, विजय घुनोवा, निर्मला जी, रंजना कुकाड़िया, शीला टंकारिया एंड प्रगना एंड रिजवान शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को चुनने के लिए। अगला गीत ससुराल फिल्म से, मैं ले रहा हूँ आपसे इजाजत, नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है Like a Gold.
2: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड, कॉल 01923227274। Book your table today.
3: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
4: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: डिस्कवर द मैजिक ऑफ Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danu 11, 11. Danu Properties.
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
14: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
12: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
15: टू बुक कॉल 0208-514-54 Download. Book online at Eventbrite.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Experience the magic of Mexico City, Cancun, Mayakoba, Tulum and Caribbean Islands with TravelHubWorld.com.
18: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
19: TravelHub, best service with unbeatable price.
18: At all protected.
19: Visit TravelHubWorld.com.
20: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
21: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
0: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
21: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
0: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
22: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
23: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
24: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू यू, होप यू आर वेल। जहाँ भी रहें खुश और खैरियत से रहें, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय करते रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भाजें तो मुझे इशारा आपकी तरफ से ज़रूर चाहिए, लेकिन मेरी स्क्रीन तो ये बता रही है कि इशारा सरिता दे तो दिया है, सबने बता दिया है कि कितने इन्जॉय किया आपने इन दोनों गीतों को। राइट, सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे पहली दफ़ा अवसर मिला ऑशवल के एकता सेंटर में जाने का, जहाँ एक उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए मस्ती भरी दोपहर रखी थी और उस दोपहर में मुझे उन्होंने अपना साथी बनाया। बहुत से बॉलीवुड क्विज क्वेश्चंस पूछे, नेम द ट्यून, नेम द म्यूज़िक डायरेक्टर, नेम द लिरिसिस्ट, मैं कौन हूँ, ऐसे बहुत सी सेगमेंट्स थी और सबके साथ खेल के इन क्विज़ को बहुत मज़ा आया। अब मैं एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि एक का नाम लिया तो बाकी के नाराज़ होंगे। तो जितने भी मेरे साथी वहाँ मुझे मिले, जो लाइका गोल्ड और लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, हमारे प्रोग्रामों को बाकायदगी के साथ सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं और उनको अपना बचपन याद आता है जब वो लाइका गोल्ड सुनते हैं और इतने पुराने पुराने गीत उनको बहुत अच्छे लगते हैं, आप सबके प्यार की मैं तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। यू हैव ए सेफ जर्नी बैक होम और रास्ते भर मैं आपका साथ निभाने वाली हूँ, लेकिन जैसे ही घर में पहुँचें तब भी मेरा साथ देते रहिएगा। पक्की बात? यस। तो ठीक है, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और आप सभी जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के बैक टू बैक दो गाने मैंने चुने रेखा जी की फिल्मों के। पहला गीत था खून भरी मांग से और दूसरा गीत था फिल्म उमराव जान से। दोनों ही गीत उन पर पिक्चराइज हुए थे, बहुत खूबसूरत गीत थे। पहले गीत में आवाज़ें थी नितिन मुकेश एंड साधना सरगम की और दूसरे गीत में आवाज़ थी आशा भोसले जी की। रेखा के बारे में क्या बताऊँ, मुझसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे। रेखा बॉर्न एज भानु रेखा गणेशन इज़ अ प्रूफ ऑफ एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस, an actor par excellence, yes, an exceptional Kathak dancer, a singer, a fashion icon, and most importantly, the love of countless fans. बहुत प्यार करते हैं रेखा जी से उनके fans. Despite living in the limelight for more than 5 decades, Rekha is still an she's an icon. She's an icon. People look at her, her grace, everything is so fascinating. And she has starred in more than 200 films, as you know, and is the recipient of several accolades, including 1 National Film Award and 3 Filmfare Awards. She has often played strong and complicated female characters from fictional to literary in both mainstream and independent films as well. In 2010, the government of India honored her with Padma Shri, India's 4th highest civilian honor. So she was born on 10th of October 1954 in Madras, now Chennai, कहते हैं। एंड रेखा's एंट्री इन टू द वर्ल्ड वॉज अंडर द शेडो ऑफ हर पेरेंट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड हर फादर जेमिनी गणेशन वॉज अ सेलिब्रेटेड तमिल एक्टर एंड हर मदर पुष्पावली वॉज अ रीनाउंड तेलुगु एक्ट्रेस। हाउएवर द ग्लैमर ऑफ देयर प्रोफेशंस बिलाइड द स्ट्रगल दैट ले अहेड फॉर द फैमिली। बहुत सी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी रेखा के बारे में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में गैप के बाद, क्योंकि ये काम भी तो करना बहुत जरूरी है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में तो काम बड़ा आसान है. यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप कहीं भी बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर. आज आपका एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 127 रुपीज एंड 50 पैसे. डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. Passports, tickets, kids' tablets.
3: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
2: And checking in with grandma.
3: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
2: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
2: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Holiday sorted.
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
5: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
6: Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
8: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
8: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all prices. Protected.
1: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
9: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
5: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL.
9: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
5: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा.
9: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450.
10: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
11: बीकानेर वाला परंपरा भी.
10: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इलफर्ड. बीकानेर वाला. इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी.
11: बीकानेर वाला.
12: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, CTC की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज. चा फॉर यू, 5 चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
13: Craving the taste of home this festive season?
14: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
13: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today.
15: Haldiram's.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com. Feel good track.
15: Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आशा भोसले की आवाज़ में आपने ये गीत सुना फ्रॉम द फिल्म सावन भादो जो 1970 में रिलीज हुई थी। रेखा जी ने वैसे तो ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु फिल्म से फिल्मों में कदम रखा था इन 1958 व्हेन शी वाज ओनली 4 years old एंड उसके बाद कन्नड़ फिल्म में उन्होंने काम किया था बट हर हिंदी फिल्म डेब्यू केम इन अ ईयर लेटर विद सावन भादो इन 1970 और उस वक्त बहुत यंग भी थी रेखा एंड बहुत कैजुअल सी थी, लगता नहीं था कि वो हीरोइन मटेरियल है उस टाइम, लेकिन शोर तो तब भी मच गया था कि रेखा आई है। रेखा की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया और लैंग्वेज सीखी। पहले तो उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती थी और देखिए ना कमाल की बात कि बाद में उन्होंने इवन स्मिता पाटिल को की आवाज़ को डब किया था फॉर द फिल्म वारिस व्हेन स्मिता पाटिल की डेथ हो गई थी तो रेखा ने उनकी वॉइस की उसको वॉइस दी थी उस उनकी डबिंग में। सो रेखा जी बहुत अच्छी, डिक्शन उनकी बहुत अच्छी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी, बहुत प्यारा काम करती है, बहुत अच्छी सुलझी हुई अदाकारा हैं। और उमराव जान खूबसूरत जैसी फिल्मों में तो उन्होंने बहुत, घर उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। सो बहुत सारी फिल्में जैसे गोरा और काला, जमीन आसमान, रामपुर का लक्ष्मण, नमक हराम, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर बचा ना जाए, ये वो भी फिल्म बहुत खूबसूरत थी और उसका गीत मैंने नेक्स्ट क्यू किया है। लेकिन पहले बता दूं कि ये जो अखियां ना मार वाला गाना था वो आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: भाई चैन से मुझको कभी आपने जीने ना दिया. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बाय ओपी नैयर साहब. एंड आशा भोसले जी को इस गीत के लिए अवार्ड भी मिला था. फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था इन्हें. और इस फिल्म में रेखा थी एंड साथ में थे सुनील दत्त. बहुत खूबसूरत फिल्म थी प्राण जाए पर बचन ना जाए. और ये गीत मैंने किया बड़े प्यार से वैभवी और श्रीजीत के नाम. और आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. एंड जैसे कि मैंने अर्लियर ऑन बताया था कि एकता सेंटर में आज हम थे और वहाँ बहुत से साथियों के साथ मिलने का अवसर मिला. आपके मैसेजेस भी मिल रहे हैं मुझे कि आपने ये शो बहुत एंजॉय किया. थैंक यू एवर सो मच.
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
3: At OXO, we know us Brits can be rubbish at saying how we really feel. Sometimes, food just says it better. Whether it's a spag bol peace offering, a date night risotto, or some chicken soup TLC, you can say it without saying it. We've got you. Just crumble in some of that original OXO flavour for a meal that means a whole lot more. OXO. Let the flavour do the talking.
4: ये है
5: Leica Gold.
4: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
7: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
11: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
12: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
13: Two businesses.
14: Same town.
13: Same service.
14: One appears on page one of Google.
13: The other doesn't.
14: Guess which one gets the customer?
13: The truth is brutal.
14: The first page of Google gets the business.
13: Everyone else gets what's left.
14: So here's the real question.
13: When your customers search for what you sell, do they find you?
14: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
13: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
15: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
17: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
18: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना.

0: मिस्टर नटवरलाल से चुना था मैंने इस गीत को, और इससे पहले वाला गीत भी बड़ा ज़बरदस्त था जिसे धर्मात्मा फिल्म से मैंने चुना था, और धर्मात्मा का वो गीत इन पर, और साथ में कौन थे धर्मात्मा के, कौतुबा तोबा वाला तो ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन थे, एंड दैट वाज फिरोज खान आई थिंक। और दोनों ही गीत आपने पसंद किए, आपके मैसेजेस मुझे मिल गए हैं, थैंक यू सो मच। जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं उन सब का मैं थैंक्स करना चाहूँगी, चाहे सलमा जी हो, लाश जी हो, अमिता जी, फरजाना, विजय गुदरे, वत्सला जी, महेंद्र जी, अर्जुन जी, इंतशाह, पूरन कपूर जी, एंड ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है, दिनेश पोपट जी, भारती जी, हरप्रीत सद्धू, भरत गंगाराम जी, जैस्मिन जी, फरीदा गुलाम अली, दिव्या फ्रॉम हैरो, एंड सहर, संतोष जी फ्रॉम हैरो, तोची जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आइए बढ़ते हैं अब हम इन मैसेजेस की जानिब। मैसेजेस के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गीत फ्रॉम द फिल्म सिलसिला, वो हमें पहुँचाएगा न्यूज तक।
1: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM, ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
2: Wow! So, sending money to India is instant?
1: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
2: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
3: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जगजीत सिंह जी की आवाज सुनते ही गूज़बम्प्स मिलते हैं। कितना सोस और साथ ही इतना मिठास, ऐसी आवाज जिसे सुनते रहने को जी चाहता है, ऐसी आवाज थी जगजीत सिंह जी की। वैसे तो थी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आज भी हमारे बीच हैं, आज भी उनकी आवाज़ गूंजती है हमारे बीच, आज भी उनके गाए हुए गीत हम गुनगुनाते हैं, उनके गाए हुए गज़लें हमारे दिल को भाती हैं। तो बहुत से उनके फैंस हैं जो मैसेजेस भी लिख रहे हैं, सरिता थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग जगजीत सिंह। वैसे तो उनके गाए हुए अनेकों गीत और गज़ल्स हैं, लेकिन मैं दो मैंने आपको प्ले कर दिए है, और एक और गीत मैंने क्यों किया है जो आपकी सेवा में ज़रूर मैं पेश करूँगी। और पहला जो गीत आपने सुना या गज़ल कह सकते हैं, सरफरोश फिल्म में था और ये पिक्चराइज हुआ था नसीरुद्दीन शाह जी पर। जगजीत सिंह जी ने गाया था इसे, होश वालों को खबर क्या। और दूसरा सारे पिंड चपवाड़े पाए, इस गीत के साथ मेरी बहुत सी यादें हैं और वो मेरे साथ ही जाएंगी, क्योंकि अगर कोई आपको सामने बिठा दे और फिर ये गीत गाए आपके लिए तो आपको कैसा लगेगा। आई कैन स्टिल फील द शिवर इन माई स्पाइन कि मुझे मेरा क्या हाल था जब जगजीत जी ने मुझे अपने साथ स्टेज पर बिठा कर ये पूरा का पूरा गीत गाया था। अगर आप भी उस वक्त वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर था, तब वही ऑडिटोरियम था जहाँ पर ऐसे शोज हुआ करते थे, तो वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर में उनका शो था। आई वॉज कंपेयरिंग द शो एंड देन इन जगजीत जी से मैंने कहा था कि आई विल इंट्रोड्यूस यू बिहाइंड द कर्टन्स। सो ही सेड कि वाई कोई काली कलूटी कोई अंजुन दे, तो मैं तेन कहता कि तू पिछों दे यू नो कर्टन से पीछे खड़े होके मैंने इंट्रोड्यूस कर, वाई डोंट यू कम ऑन द स्टेज। सो आई सेड नहीं नहीं आप मुझे बुला लेना जब मुझे इशारा कर देना जब आपने इंटरवल करना हो। एंड इन्होंने ये गाना शुरू किया और मुझे बुलाया स्टेज पर, पूरा गाना गाया और मुझे साथ में बिठा लिया आपने। तो मेरी बहुत सी यादें हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं, एटलीस्ट आई मस्ट हैव मेट हिम अबाउट 10 times, इंटरव्यूड हिम, सच अ नाइस पर्सन। बहुत बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जगजीत जी के साथ, तो आज भी वो हमारे बीच जीवित हैं, उनकी आवाज़ इसी तरह से गूंजती रहेगी बरसों तक। और अगर आप भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं तो मैंने ये दोनों गीत आपके नाम किए। योगेश जी, हंसा वोरा जी बहुत पसंद करते हैं, एंड विनी विनोद जी, वरुण जी, विजय गुजरई जी, अर्जुन जी, थैंक यू सोम दिनेश पोपट जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आज ही के दिन कौन से ईयर में उनकी डेथ हुई, तो बता दूं कि 2011 आज ही के दिन वो इस दुनिया को, या यूं कहें कि अपना शरीर छोड़ गए थे। एंड ही टर्न 70 इन फेब्रुअरी 2011 जब अपोलो लंदन में इनका हैमरस्मिथ में इनका शो था, वहाँ बहुत बड़ा केक काटा गया था, सब में केक डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया था, और ही एम्ड कि मैं 70th बर्थडे पर ही कमिटेड 70 कॉन्सर्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ही टूर्ड द यूके, सिंगापुर, मॉरिशियस और पर बहुत जगह और जाना था, नहीं जा पाए। गुलाम अली साहब के साथ इनका मुंबई में भी कॉन्सर्ट था पर नहीं हो पाया। ही हैड ब्रेन हेमरेज ऑन 23rd ऑफ सितंबर इन 2011 एंड ही वाज इन कोमा फॉर ओवर 2 weeks एंड देन डाइड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर एट लीलावती हॉस्पिटल। सो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन, और ऐप अगर डाउनलोड किया हुआ है तो ऐप के जरिए घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर। और आज आपका एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 127 रुपीज़ एंड 50 पैसा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At OXO, we know us Brits can be rubbish at saying how we really feel. Sometimes food just says it better. Whether it's a spag bol peace offering, a date night risotto, or some chicken soup TLC, you can say it without saying it. We've got you. Just crumble in some of that original OXO flavour for a meal that means a whole lot more. OXO. Let the flavour do the talking.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: Listen to that. The kids are finally in bed. Ah, time to sit back, relax, and crack open the HMRC app. Because now I've got 5 minutes peace, I can sort out child benefit and get round to updating things like our new address. It's handy for claiming tax refunds too. For your money and tax, download the HMRC app. You're on it.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
5: कॉल प्रथम पटेल 0783830 2450।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: Plan your exotic dream holiday to Maldives, Mauritius, Bali, Zanzibar and many other destinations only on TravelHubWorld.com.
12: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
11: TravelHub, best service with unbeatable price.
12: At all protected.
11: Visit TravelHubWorld.com.
13: Celebrate every get-together with Haldiram's.
14: Punjabi samosas, aloo tikki, momos, spring rolls, beetroot kebab and more.
13: Bring every one together over your favorite snacks. Find it at your nearest grocery store.
14: Haldiram's.
15: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: dose of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: भई यही मैसेज बड़े प्यार से मैं आप सबके नाम करती हूँ, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो. और ये गीत मैं आपके नाम भी करती हूँ जल्दी से. हाय सहिता जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सहिता जी, माय सन निक्कीस बर्थडे, प्लीज़ कैन यू विश हिम ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम लाइका गोल्ड एंड मॉम जयश्री, डैड सुभाष एंड ऑल द परमार फैमिली टुडे. हमारी तरफ से भी निक्की को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिवस पर. ऐसे दिन इनकी ज़िंदगी में बार बार आए, हज़ार बार आए, खुशियाँ मनाते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और खुशियों को बटोरते रहें. और आप कौन हैं? आपने लिखा, हेलो सीता जी, लव द सॉन्ग जगजीत जी सॉन्ग. आई वॉज गोइंग टू सेम एंड बिसाइड वेम्बली, इट वॉज सेम एट अपोलो हैमरस्मिथ व्हेन यू वर देयर एज वेल एंड आई वॉज देयर एंड वो आपको ढूंढ रहे थे. रियली अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन शेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. भारती जी आप भी सुन रही हैं, हरप्रीत सिद्धू आप भी सुन रही हैं, वैंकूवर में प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं, जानकर अच्छा लगा.
2: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: फिल्म का नाम था गैम्बलर और इस फिल्म में किसने काम किया था? इस फिल्म में थे देवानंद और साथ में थी जाहिदा एंड साथ में शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। और ये गीत प्ले क्यों किया? वैसे तो बहुत से गीत थे, लाइक चूड़ी नहीं मेरा दिल है और शोक और भी इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो गीत प्ले हो चुके तो मैंने सोचा ये गाना भी बहुत दिन हो गए प्ले नहीं हुआ, तो क्यों ना आज के प्रोग्राम में इसे प्ले किया जाए। तो साथ ही वैसे जाहिदा का बर्थडे कल था, आज नहीं है, कल था उनका बर्थडे। तो बहुत कम फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन जितनी फिल्मों में भी काम किया वो उनको नोटिस किया गया था। चूड़ी नहीं मेरा दिल है ये गाना उन पर पिक्चराइज़ हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था। एक दिन जाहिदा रात और दिन नाम जो फिल्म बन रही थी जिसमें नरगिस थी, वो नरगिस अगर आपको नहीं मालूम तो जाहिदा की बुआ थी, नरगिस काम कर रही थी और फिल्म में जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन का ही पैसा लगा हुआ था, यानी कि ही वॉज अ प्रोड्यूसर फाइनेंसर। एंड जिस स्टूडियो में रात और दिन की शूटिंग चल रही थी उसी में एक दिन एक दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म तीन देवियां की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नरगिस जी से मिलने चले गए और उस वक्त जाहिदा भी नरगिस जी के पास ही थी, और उसी वक्त देवानंद ने जाहिदा को पहली दफ़ा देखा था। और उन्होंने उनको जब पता चला कि जाहिदा नरगिस की भतीजी हैं तो उन्होंने जाहिदा से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं करना चाहूँगी ये काम। तो उन्होंने बचपन से ही उनका ये ख्वाब भी था कि मैं फिल्मों में काम करूं, तो वो इनकार नहीं कर सकी और उन्होंने कहा कि यस। तो जाहिदा ने देव साहब से कहा ज़रूर, क्यों नहीं करूंगी। जाहिदा का जवाब सुनकर देव साहब को काफ़ी खुशी मिली और कुछ दिनों बाद ही देव साहब पहुंच गए उनके घर में क्या करने। उन्होंने जाहिदा को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया। प्रेम पुजारी से ही देवानंद बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करने जा रहे थे, तो उनकी पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। जाहिदा ने जब अपना रोल सुना तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने प्रेम पुजारी में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दुनिया के कई देशों में इस फिल्म के लिए जाहिदा को देव साहब व फिल्म यूनिट के साथ ट्रैवल भी करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी प्रेम पुजारी की शूटिंग कंप्लीट करने में देवानंद को बहुत वक्त लगा। इसी बीच डायरेक्टर एल बी लक्ष्मण ने जाहिदा के पास वो ऑफर लेकर गए कि अनोखी रात में वो काम कर लें। उस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित सानी थे, जिन्हें अजय सानी के नाम से भी आप जानते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन, जबकि फिल्म की कहानी लिखी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। जाहिदा ने अनोखी रात साइन कर ली, वैसे वो थोड़ी सी हिचकिचाई थी, उन्होंने सोचा कि संजीव कुमार बी ग्रेड फिल्में करते हैं तो मैं उनके साथ काम करूं या नहीं करूं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कहानी जो है ऋषिकेश मुखर्जी की लिखी हुई है, तो उन्होंने मान लिया और उस फिल्म में काम किया। प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी इसलिए जाहिदा ने अनोखी रात की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग कंप्लीट हुई और 1968 में अनोखी रात फिल्म रिलीज़ होगी, जबकि जाहिदा की साइन की हुई पहली फिल्म यानी देवानंद की प्रेम पुजारी अनोखी रात के बाद दो साल बाद रिलीज़ हुई थी। डिड यू बिलीव दैट? और 9 अक्टूबर 1944 में जाहिदा का जन्म हुआ था। इनकी कहानी बहुत विस्तार में क्या बताऊं, बस थोड़ी सी बातें मैं बता देती हूँ जितना कि मुझे पता होता है। चलिए अब देखते हैं उनकी किसी और फिल्म का गीत, अगर किसी ने नहीं बजाया तो मैं आपको सुनवा दूंगी।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं आपकी दिवाली को और भी हसीन बनाने के लिए। रॉयल अल्बर्ट हॉल में ऑन संडे 1 नवंबर को वो परफॉर्म करने जा रही हैं, लेकर आ रहे हैं सनातनी इवेंट्स वाले, एंड टिकट्स फ्रॉम वेन्यू बॉक्स ऑफिस से आप ले सकते हैं, एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। इसी के साथ साथ बता दूँ कि नेक्स्ट वीकेंड पर पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली परफॉर्म करने वाले हैं क्रिस्टल ग्रैंड स्लैम, एंड संडे 18 अक्टूबर को ICC बर्मिंगम में।
2: लाइका गोल्ड, लाइका
3: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: ये भी आपको बता देते हैं कि इस बार ही क्या हो रहा है। लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड, होस्टेड बाय सैंडी शाह, राजबदन, दीप राजा एंड विश भटनागर आर द गेस्ट एंड द लाइक अ रेडियो नेटवर्क मैन इन द हॉट सीट फॉर अ कन्वर्सेशन दैट गेट्स पर्सनल एंड अनअपोलोजेटिकली ऑनेस्ट। एंड बहुत से टॉपिक होंगे इसमें, आर वुमेन बेटर रेडियो प्रेजेंटर्स देन मैन, जानने के लिए आप देखिए ना, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: No, sorry, mate.
5: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it won't be for a few days.
8: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
9: ये है
10: लाइका गोल्ड।
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Center on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Center, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
14: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.

0: देशराज बसन जी, ये गीत मैंने आपके नाम किया और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू शेयर विद अस, थैंक यू। एंड हरप्रीत सिद्धू, आपको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने, ये जानकर अच्छा लगा। एंड जाहिदा हुसैन, वेल आई डोंट नो इफ़ यू, जैसे कि मैंने कहा था कि वो नरगिस जी उनकी बुआ थी, तो ऑब्वियसली वो संजय दत्त की कज़न है। एंड बहुत कम फिल्मों में उन्होंने काम किया, लाइक अनोखी रात, गैम्बलर, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा की बात बताती हूँ कि शी वॉज ऑफर्ड द रोल विच मुमताज ने किया था वो रोल, पर पहले देव साहब ने वो रोल इन्हें दिया था जाहिदा को। एंड द सिस्टर रोल वॉज एक्सेप्टेड बाय, मेन जो था वो था मुमताज ने किया था, एंड जो सिस्टर का रोल इन्हें ऑफर हुआ था ये जीनत अमान ने फिर प्ले किया था। एंड कैन यू इमेजिन, अगर जाहिदा ने किया होता तो कितनी पॉपुलर होती उस गीत के जरिए, दम मारो दम। एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, तीन चोर भी एक फिल्म थी जिसमें इन्होंने 73 में काम किया था, देन शी गॉट मैरिड एंड सेटल्ड। तो आज हमने थोड़ा सा याद किया जाहिदा जी को। एक और गीत है जो मैं प्ले करना चाहती हूँ अनोखी रात फिल्म से, लेकिन कांट डिसाइड कि कौन सा गाना मैं प्ले करूँ, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कहीं कांटा छुप जाएगा वो गाना, या फिर ओरे ताल मिले नदी के जल में, कौन सा गाना आपके दिल के ज़्यादा करीब है जल्दी से मुझे बता दीजिए। ओरे ताल मिले बी एंड ए इस मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे जल्दी से बता दे, तब तक मैं ये काम कर लूं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 127.55, Afghani's 86.29, Pakistani rupees 367.89, Bangladeshi taka 163.6, Sri Lankan rupee 437.54, Kenyan shillings 171.71, US dollars 1.32.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £101.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: निशा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
4: ये है लाइक अ गोल्ड।
5: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
6: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
5: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स।
6: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स, किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM।
5: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920।
7: This Diwali, celebrate with Shayona.
8: Enjoy Mathia and Chorafali. Mix and match any three for just £4.50.
7: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
8: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrisons, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
7: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khas.
8: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.

0: ये आपने क्या कह दिया, दिल में भी होने लगा कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ। क्यों, आपके दिल में भी कुछ हो रहा है? हो रहा है तो बता दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। दो बैक टू बैक गाने सुने आपने और दोनों ही गीत बड़े ज़बरदस्त थे। मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ आपने भी ज़रूर इन्जॉय किया इन गीतों को। ये गीत जो अभी अभी मेरी आवाज़ के साथ चल रहा था, ये मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म खुदा कसम, लेख टंडन, रवीना टंडन जी के फादर ने बनाई थी ये फिल्म, डायरेक्ट की थी उन्होंने एंड स्टोरी भी उन्हीं की थी। एंड इस फिल्म में काम किया था विनोद खन्ना ने, साथ में थी टीनी मीनी यानी टीना मुनी एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। उम्मीद करती हूँ गीत को आपने उतना ही इन्जॉय किया जितना कि मैंने। और दूसरा गीत जो मतलब मीन्स इस आवर का पहला गाना जो था वो मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता भी 1981 की फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था इस्माइल शिरोफ ने, कुणाल कपूर, पद्मनी कोल्हापुरे एंड शशिकला ने इस फिल्म में काम किया था। खय्याम साहब का था संगीत, बहुत ही प्यारा गीत था जिसमें आवाज़ें दो आपने सुनी थी अनवर एंड आशा भोसले की। और इसी दौरान बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये बता दूँ कि ये फिल्म में इन दोनों गीतों को मैंने क्यों चुना, पहले तो ये बता दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। ये फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 9 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी 1981 एंड खुदा कसम भी 9 अक्टूबर 1981 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन जो फिल्में आज के दिन रिलीज़ हुई, लूटमार, ये गीत मैंने लास्ट वीक ही प्ले किया था इसलिए मैंने आज छोड़ दिया। लूटमार जिसमें देवानंद, टीना मुनीम एंड राखी ने काम किया था, देवानंद ने डायरेक्ट किया था, राजेश रोशन का था संगीत। और दूसरी जो फिल्म रिलीज़ हुई उसका नाम था गैर, GAIR, जिसके गीत मैं नहीं शामिल कर पाए क्योंकि वो भी बच चुके हमारे यहाँ से। एंड 1969 में आज ही के दिन चिराग फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका गीत मैं ज़रूर शामिल करने की कोशिश में रहूँगी। ऑल्सो इत्तफाक, राजेश खन्ना और नंदा की फिल्म, आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। एंड 10th ऑफ अक्टूबर को अनीता, मनोज कुमार और साधना की फिल्म भी आज के दिन रिलीज हुई थी। सो अनीता का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप बता दीजिए, चिराग का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे या इत्तेफाक में से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। जिन मेरे साथियों ने ओहरे ताल मिले नदी के जल में लास्ट आवर में वो गीत सुनना चाहा था उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। प्रतिभा जी, जहीर खान साहब इन कराची, प्रज्ञा जी, मन्नू जी, अंजलि जी, विजय गुदई, दिव्या हैरो में सनी, नरेंद्र जी, भारती जी, मोहम्मद अयूब चौहान साहब, अमिता जी, संतोष फ्रॉम हैरो, हरप्रीत जी एंड शेखर जी, आप सभी ने ये गाना सुनना चाहा था इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। पर दो तीन वोट्स दूसरे गीत के लिए भी थे, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, जो शामिल नहीं हो पाया। और अभी भी एक मैसेज मिला है, सरिता बेन, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग आफ्टरवर्ड्स एट एकता सेंटर अर्लियर टुडे एंड वी रियली एंजॉयड योर क्विज प्रोग्राम ऑन बॉलीवुड, क्विज क्वेश्चंस ऑन बॉलीवुड। नीलेश एंड नैना शाह, थैंक यू एवर सो मच आपके प्यारे से मैसेज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ लें और फिर मैं चॉइस भी दे दूं या आपको बाद में चॉइस होंगी, पहले आप बता दीजिएगा मुझे कि अनीता फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, गोरे गोरे चांद से मुख पर या फिर मैं देखूं हर ओर सखीरी। दो गाने मुझे याद आ रहे हैं, बाकी के हो सकता है और भी बहुत प्यारे गीत हों।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and
0: right.
1: The SBI UK branch.
0: अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच और ऑनलाइन कीजिएगा या फिर SBI योनो ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र। और आज आपको मिल रहा है रेट 127 रुपीज़ एंड 50 पैसा अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। और टर्म्स एंड कंडीशंस तो हमेशा रहती हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: राइट भी इसमें ये गाना भी था करीब आ ये नज़र फिर मिले ना मिले, वो भी गाना बड़ा प्यारा था, लता मंगेशकर जी ने गाया था। एंड अनीता का था गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं ये गाना। एंड देन तुम बिन जीवन कैसे भी था, वो भी गाना बहुत अच्छा था। कौन सा गीत आपके दिल के करीब है जल्दी से बता दीजिए। ए कौन सा मैंने बताया था, गोरे गोरे शायद। चलिए मैं देखती हूँ कि किसको कितने वोट्स मिलते हैं। अब मैं प्रॉपरली आपको बता देती हूँ, करीब आ ए नज़र फिर मिलें या ना मिलें ये गीत सुनना चाहते हैं, या गोरे गोरे चांद से मुख पर। अब गोरे गोरे चांद से मुख पर बन गया बी एंड करीब आ ए नज़र बन गया ए। तो कौन सा गीत आपके ज़्यादा करीब है, करीब आ या फिर गोरे गोरे चांद से मुख पर, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दें।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: What's the secret to layers of extraordinary flavor? Making no compromises. My signature bolognese has been crafted for a sublime depth of flavor in three simple steps. Add crushed garlic and simmer. Mix in the sofrito vegetable base. Layer in the rich tomato and oregano sauce. Why settle for ordinary when you could have extraordinary? Lloyd Grossman Premium Kits. Anything but ordinary.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: In times of loss, Om Funeral Care is here with compassion and support. On Kenton Road, West London and in Ilford, East London, our experienced priests guide families through funeral rites in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day. Om Funeral Care. Honoring your loved ones.
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: Add crunch to your celebrations with Haldiram's.
9: Aloo Bhujia, Punjabi Tadka, Bombay Mix, Khatta Meetha, Nimbu Masala and more. Made for sharing.
8: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
9: Haldiram's.
1: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mere zyadatar saathiyon ne is gaane ki farmaish ki thi, Rani of Slough and महेश राठौर जी, आप सुनना चाहते थे मैं देखूं जिस और सखी रे सामने मेरे सांवरिया, फिर किसी रोज़ ज़रूर सुनवा दूंगी। प्रतिभा जी थैंक यू, संतोष हैरो में रानी जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कौन हैं, आपका नाम है गुरमीत सिंह बच्चू जी, थैंक यू आपका भी, आप भी बड़े प्यार से प्रोग्राम सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।

0: आनंद मिलिंद का खूबसूरत संगीत शामिल है इस हफ्ते, तो मैंने चुना है उनके अर्ली डेज में से ये गाना इस उम्मीद पर कि आप जरूर पसंद करेंगे।
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

अभी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

भाई क्या आपने अनुराधा पौडवाल के साथ जो मेल वॉइस थी, जो डायलॉग्स कह रहे थे, उनकी आवाज़ को पहचाना? अगर नहीं पहचाना तो मैं बता देती हूँ, ये आवाज़ थी सुरेश ओबराय जी की। और ये

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: इस गीत के जरिए हमने याद किया गुरुदत्त जी को. गुरुदत्त वन ऑफ माय फेवरेट्स, हीरो भी कहूँगी मैं, साथ ही बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे और उनकी सोच बहुत आगे थी. बहुत जल्दी चले गए लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है या जितनी भी फिल्में बनाई, चाहे वो कागज़ के फूल हो, प्यासा हो, मिस्टर एंड मिसेस 55 हो एंड चौधरी का चांद हो, साहेब बीबी और गुलाम हो, सभी सुपर डुपर हिट फिल्में थी.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकते हैं 127.95 रुपीस, इंडियन रुपीस, एंड अफगानीज 86.18, पाकिस्तानी रुपीस 367.89, बांग्लादेशी टका 163.6 एंड US डॉलर्स 1.32.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: It's £101.94 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
2: This is Like a Gold.
1: जी हाँ, वीकडेज में तो आते ही हैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, लेकिन मेरे बाद भी आ रहे हैं हॉट सीट पर बैठने के लिए और आपका मनोरंजन करने के लिए, अच्छे अच्छे पुराने पुराने गीत सुनाने के लिए. एंड पंडित सुधीर शर्मा जी, आपका भी मैसेज मुझे मिल गया. आपने कहा चौदहवी का चांद, ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने आपके नाम किया. अर्जुन जी, जैस्मिन जी, प्रतिभा जी, आपके दोबारा से मैसेजेस मिल गए हैं, थैंक यू. ये गाना भी आप सभी के नाम.

0: फिल्म का नाम था भरोसा। 1963 में गुरुदत्त जी की ये फिल्म आई थी। एंड ये गीत उल्लास जी ने कहा कि जल्दी से दिव्या जी के नाम करते जो हैरो में प्रोग्राम सुन रही है। भाई आप सबके नाम करती हूँ मैं ऐसे मीठे मीठे गीत। अब मेरी घड़ी की सुइयां ये कह रही हैं कि सरिता जाने का वक्त है। जी हाँ, मेरे जाने का वक्त है, सैंडी शाह के आने का वक्त है। सैंडी शाह विल बी हेयर इन लंदन एंड सराउंडिंग एरियाज में आप इन्हें सुनेंगे, और मैनचेस्टर में आप सुन पाएंगे किसे, आप सुनेंगे अंकुर को। एंड दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर होंगी सोनिया। मुझे इजाज़त दीजिए, कल जिंदगी ने साथ दिया तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊँगी कुछ और नए नए गीत लेकर। नहीं, कुछ किसी की सेलिब्रिटी क्या बर्थडे है, शादी की सालगिरह तो जरूर बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। यू हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग, एंड जो भी करें अच्छा करें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए सुपर्ब इवनिंग, बाय फॉर नाउ।
1: सरिता सबोवा, लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
2: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
2: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
2: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
1: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
2: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग।
5: No, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
9: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
8: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
9: बीकानेर वाला।
10: Sunshine, skyscrapers and souks.
11: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
10: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
11: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
10: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
11: Southall Travel. At all price. Protected.
12: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
13: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
12: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में।
13: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
12: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756147।
13: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016।
12: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
14: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ, कोई पता चला?
15: गुरु गुरु,
16: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
14: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
17: शीघ्र शीघ्र।
16: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
13: टू बुक कॉल 0208 514 5400, book online at Eventbrite.
18: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
17: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
18: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
21: This is Life.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Sandy Shah, live on Leica Gold, Greater London.

0: ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store Chai lovers, आपका फ्लेवर कौन सा मसाला का तड़का ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान सीटीसी की कड़क किक ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज चा फॉर यू पांच चाय हर मूड के लिए आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com
2: Happy Navrati from Leica Radio Network. Don't forget, Navrati starts tomorrow. Special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Foods. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.

0: कीजिए, आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
2: Two businesses.
3: Same town.
2: Same service.
3: One appears on page one of Google.
2: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: forget, Navrati starts tomorrow. Special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Foods.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
2: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.